0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कम पेने
1: इटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: अलीशानी विनो को
1: और मैं पाचू इटी विनो और रेडियो

0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: द ब्रोजी बिट्स डॉन मिलेंस एंटरटेनमेंट आई एम अप इन अ कनेक्ट आई एम अ मिस बॉय ट्रैक निगम जे